0: सिर्फ आप प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: तरफ प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत. मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.

0: 101.2, the beat of Bollywood.
1: This summer, there's big cash wins with Big Ticket.
2: A guaranteed 15 million dirham grand prize away.
1: Plus, with Big Spin, the chance to win up to 1 million dirhams.
2: And 5 consolation prizes of 100,000 dirham each.
1: Don't forget, the 4 weekly cash prizes of 25,000 dirhams.
2: Buy now at bigticket.ae.
3: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
4: ताकत का तरकाव विद डाबर शिलाजीत।
5: आज का पावर टिप, अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट के साथ कीजिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से ही बनता है स्ट्रॉन्ग डे।
4: ताकत का तरकाव विद डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
6: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 7:08।
1: Bollywood.

0: बॉलीवुड। एस सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें सिर्फ 4,888 दिरहम में, 100% डिजिटल। जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
3: Introducing the Thumbe International Pathway Medicine Program at Gulf Medical University. Starting with 3 years of the higher diploma in preclinical sciences in the UAE, then completing the remaining 3 years at partner universities in Poland, Romania, the UK, Italy, Malaysia, Uzbekistan, Ghana, Malta or Egypt for medical degree with affordable tuition fees and scholarships. Your journey to become a globally qualified doctor starts here. Visit gmu.ac.ae or call 056-549-5755. Gulf Medical University. Where the world comes to learn.
4: Namaste.
5: Hola.
4: Assalamualaikum.
6: Bonjour.
7: Ni hao.
6: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
8: Wow, your hair color looks stunning.
9: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
8: Yeah, right.
9: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
8: Really?
9: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
8: I'm buying it right now.
9: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
10: InsuranceMarket.ae. The worst part of a small accident isn't the dent, it's what can happen after. But with us, you are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from InsuranceMarket.ae.
11: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन, आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: मॉर्निंग 7:26 ऑन दिस फ्राइडे एंड पार्टली क्लाउडी आज होने वाला है दिन भर। आज रात तक देयर माइट बी सम क्लाउड कवरेज एज वेल एंड नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न एरियाज में तो बारिश के चांसेस भी आज रात, लेकिन फिलहाल इट्स नाइस एंड सनी। 36 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी एट 61%, हाईज ऑफ 40, लोज ऑफ 34 डिग्री सेल्सियस।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: यार एक बात बताओ, ऑस्ट्रेलिया को हारते हुए देखते में इतना मजा क्यों आता है यार?
0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: आप ही जितने राइवलरी जितनी यू नो स्लेजिंग करते हैं ये लोग ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स, उसके बाद तो ऑफ कोर्स एक थोड़ा सेटिस्फेक्शन तो होता है। बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चल रहा है अभी राइट नाउ एज वी स्पीक। द फर्स्ट टेस्ट ऑफ दैट टू मैच सीरीज 198 पे बंडल्ड आउट ऑस्ट्रेलिया। नाउ बांग्लादेश इन रिप्लाई 205 for 2। इट इज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय बांग्लादेश। दे लीड नाउ बाय 7 रन। इट्स द सेकेंड सेशन ऑफ डे 2 एंड हियर्स हसन महमूद ने ही टुक 6 wickets for 55 runs yesterday. Here's what he had to say after his performance.
2: Yeah, I was very excited to play with Australia because one of the best team in the world, and obviously get an opportunity, you know, to play this condition as well. And I just try to get my ball line and length and maintain the process and just follow what captain saying and just follow that.
1: I think, you know, right before the game, before the series, उनको एक line सिखा दी जाती है कि I just tried to follow my line and length. That is the one thing that every bowler says, यार. Here's Aastha Gill with the Buzz. कौन सा वो गाना आप सुनना चाहते हैं? Which song is buzzing in your mind early in the morning? Let me know. This is the early morning request. R 0543091062. This is the Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

दूंगा दिल तेरा, ले कहीं तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच। बोली में थोड़ा रेयान भी टच है, जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी, जो ना कर रहा दी तेरी ना।

0: मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: गुड मॉर्निंग 8:07।
1: बॉलीवुड

0: That's the Sheri Baloch version of Didi from Dhurandhar the Revenge. This is Big 106.2.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: और इसके साथ सारे का सारा कैलेंडर 26-27 का आ गया है. द पेरेंट्स, ऑल ऑफ अस पेरेंट्स हैव रिसीव्ड नाउ. फुल क्लैरिटी मिल गई है कि कब क्या होने वाला है. व्हेन इट कम्स टू स्कूल्स, हमारे धुरंधर वापस पहुंच जाएंगे स्कूल 31st of August. या सो एक स्कूल कैलेंडर एक्सप्लेनर पब्लिश किया गया है फॉर दुबई प्राइवेट स्कूल्स. द न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट्स द 31st of August एंड दिस इज आफ्टर थ्री डे वीकेंड. आप जानते हैं 28th ऑफ अगस्त इज गोना बी अ छुट्टी. सो 28, 29, 30 छुट्टी. उसके बाद 31st of August को इज वेन यू नो द न्यू एकेडमिक ईयर विल स्टार्ट. इसके बाद विंटर ब्रेक जो है दैट्स गोना बी फ्रॉम द 14th of December. सो 14 December से लेके 3 January, 14 December टू 3rd January इज विंटर ब्रेक. And then spring break from 22nd of March next year to 4th of April. Yeah, 22nd March se lekar 4 April 2027 aapka spring break aap expect kar sakte hain. So is cheez ko, is information ko screenshot kar lo. इससे पहले कि कोई और फ्लाइट्स को बुक कर दे ऑन द रॉन्ग डे. Yeah, for those people जो कि एडवांस प्लानिंग में विश्वास करते हैं, not like me. This is very important information. एक बार फिर 14 December, 3rd January, that's going to be winter break and spring break 22nd March to 4th of April. This is Big 106.2, a part of the Phoenicia Network.
1: Big 106.2.

0: That is one of my all-time favorite Diljit Dosanjh songs. This is Big 106.2.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: It is the 14th of August. Aaj bahut hi special day for all of us Bollywood comedy film fans. Aaj Johnny Lever ka birthday hai. And if there's ever a kahani of matlab banda kahan se kahan pahunch gaya, and then also a case of, you know, kya bhai matlab kismat. Ye combination is what Johnny Lever is. So unke bare mein kuch trivia and, you know, some of his our favorite scenes of his biggest movies aaj dopahar ko aap sunenge 1 se 5 on the big mix. Aap jante hain meri double shift aajkal, so big mix mein aaj Johnny Lever ka birthday full on celebrate karenge. But in the meanwhile, I found some absolute gold. Now Johnny Lever discover kaise hue, he was doing a charity event on stage, ek stage performance kar rahe the. And you know, जो बॉलीवुड एक्टर्स की मिमिक्री उनकी इतनी बढ़िया थी कि सुनील दत्त वॉज अ पार्ट ऑफ द ऑडियंस. ही वेंट बैक स्टेज एंड सेड टू जॉनी के अरे यार, आई एम डूइंग अ फिल्म, दिस वाज 1982, आई एम डूइंग अ फिल्म, व्हाई डोंट यू बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड जॉनी लीवर इज लाइक, क्या? सो या, दैट्स हाउ ही गॉट हिज ब्रेक. 1982 फिल्म का नाम दर्द का रिश्ता. एंड दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम that we ever saw Johnny Lever do comedy. Now, Sunil Dutt is pacing around, किसी ने कुछ चिट्ठी लिख दी है, and he's very angry about that. And Johnny Lever, being Johnny Lever, वो background में comedy कर रहे हैं. सुनिए जरा.
2: बोलो, क्यों लिखी है बेहुदा application?
3: बेहुदा? What meaning बेहुदा?
2: पढ़े लिखों की भाषा है.
0: What meaning बेहुदा? पढ़े लिखों की भाषा है. That is the first time you saw Johnny Lever do comedy in a Bollywood film. 1982, Dard Ka Rishta. It is so 80s, yaar. Banda matlab aag babula ho raha hai, idhar-udhar ghoom raha hai, and he wants answers. And this guy, Johnny Lever, incorrigible. He's doing some comedy in the background, yeah. So more on Johnny and his incredible, you know, ride in Bollywood coming up this afternoon. This is Big 106.2. Kal maine ek poll kiya tha. This song, by the way, from Awarapan 2 coming up in just a while. Ve Junoon. और पोल ये था कि कौन सी फिल्म आप पहले देखेंगे, बंटवारा 1947 या फिर आवारापन 2, जो दोनों फिल्में आज रिलीज हो रही हैं. द रिजल्ट ऑफ दैट पोल माइट सरप्राइज यू. दिस सॉन्ग्स कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. गुड मॉर्निंग.
1: बिग 106.2.

0: एंड लाइक आई वाज टेलिंग यू द लास्ट टाइम, दो नई फिल्में तो आ रही हैं बॉलीवुड में आज. इट्स अ बिग बॉलीवुड वीकेंड. देयर इज आवारापन 2 एंड 1947 पार्टीशन. बट दोनों में काफी सिमिलर सीन बिफोर काइंड ऑफ फील नहीं है.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Obviously, Aarapan 2 of course is a sequel, right? 20 साल के बाद 2007 में जो इमरान हाशमी की cult classic. Actually, by the way, if you remember 2007 में जब ये फिल्म आई थी, it was not a hit at all. In fact, it was quite the opposite. उसके बाद धीरे-धीरे word of mouth, right towards the fag end of जब सिनेमा से उतरने वाली थी, फिर वो वापस चढ़ गई वाली पटरी पे आ गई वाली बात थी इसमें. दिस टाइम इज गोना बी दिशा पाटनी आल्सो इन द मिक्स. लेट्स सी कि इस बार प्रॉपर सिनेमा हॉल के टाइम में इट बिकम्स अ हिट और अगेन इट फॉलोज दैट वर्ड ऑफ माउथ टेरिटरी. लेकिन द राइटर्स हैव सेड के यू नो क्या है ना कि शिवम यानी कि इमरान हाशमी की जो कहानी थी, डिड नॉट फील कंप्लीट. एक क्लोजर नहीं मिल रहा था उसमें. दैट इज वाई वी वर फोर्स टू यार प्लीज गिव मी अ ब्रेक. इट्स ऑफकोर्स 20 साल के बाद आप बना रहे हो, यानी कि यू वर लुकिंग फॉर द राइट स्क्रिप्ट, राइट? के मतलब बनानी तो है ही, है ना, फिल्म भी और पैसे भी, तो कैसे बनाए? अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढ रहे थे एंड दैट इज वाई इट इज कमिंग आउट आफ्टर क्लोज टू 20 years. बट बटवारा 1947 ऑल्सो हैज सम वेरी सिमिलर, वेरी सीन बिफोर शेड्स, राइट? पुट सनी देओल इन अ पार्टीशन ड्रामा, यू इंस्टेंटली थिंक अबाउट गदर एंड ही हैड टू क्लैरिफाई. एक्चुअली उन्होंने कहा कि नहीं, तारा सिंह ऑल्दो ही कंप्लीटली अंडरस्टैंड्स दैट कंपैरिजंस आर बाउंड टू हैपन, बट इट्स नॉट सिंपली अनदर Tara Singh. He says that the characters, emotional words are completely different, even though both stories are set around the partition. देखते हैं कि क्या होता है. I did a poll, by the way, yesterday, and मैंने पूछा कि पहली फिल्म आप कौन सी देखेंगे? If you had a choice between, and you do have a choice between Awarapan 2 and 1947 partition, तो बंटवारा, इसमें आप कौन सी फिल्म पहले देखोगे? And I was expecting it to be like a clean Imran Hashmi sweep, but nahi. 60-40, almost a split down the middle, and 60% people saying they'll go and watch Awarapan 2, and 40% choosing actually 1947 Batwara. Hey, Jawani to Ishq Hona Hai, coming up in just a while. This is The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

0: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
1: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
0: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
2: अलराज है। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
0: चलो चले अलराज।
3: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
4: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
5: Taqat ka tarkaab with Dabur Shilajit.
6: हर दिन को बनाइए बेटर विद अ स्ट्रॉन्ग रूटीन। हेल्दी हैबिट्स के साथ डाबर शिलाजीत को अपनी डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए और रहिए एक्टिव।
5: ताकत का तड़का विद डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
7: डिड यू हियर दैट? दैट्स द साउंड ऑफ समथिंग बिग लैंडिंग एट पापा जॉन्स। New oven toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. Six bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita, and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
3: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: गुड मॉर्निंग, 8:47 ऑन द क्लॉक एंड लेट्स टेक अ लुक सबसे पहले एट द कैपिटल अबू धाबी। आपको हल्का फुल्का ट्रैफिक कब मिलने वाला है एट मुस्तफा इंडस्ट्रियल हेडिंग साउथ गोइंग अवे फ्रॉम रब्दान, नथिंग मेजर टू रिपोर्ट फ्रॉम देयर येट। देन देयर इज दुबई शारजा में द यूजुअल दुबई साउथ हेडिंग नॉर्थ एट DLC 311, यहां पर मिलेगी आपको 4 से 5 मिनट की देर। एंड 311 E11 हेडिंग साउथ गोइंग टूवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा, एक्सपेक्ट 5 to 6 मिनट्स का डिले।
3: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: तेषां ये राजो जाने नहीं रे बाबा आपते बाबा बाबा बाबूराव गणपतराव आपते बोल
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 9:09।
1: बॉलीवुड।

0: The Giovanni song right here on कैसे बोल दिया एक्सेंट में मैंने Giovanni song.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2 The Beat of Bollywood.
0: 9:13. It is time for the Big Bollywood quiz. One complaint that I've been getting is कि यार Sid, your answer, your questions are too simple यार. ये क्या है यार, ये दिस लाइक मतलब फुल टॉस विद द सिक्स पढ़ना ही है ना. तो चलो आज थोड़ा सा मैं चैलेंजिंग करता हूँ. लेट मी डिवाइड दिस इनटू टू पार्ट्स राइट टुडे. कौन सी सिंगर का बर्थडे, ओके, इट्स अ सिंगर हु सेलिब्रेट्स हर 42nd बर्थडे टुडे, 14th of August. आई एम गिव यू सम क्लूज अबाउट दिस सिंगर. लेट्स सी इफ यू कैन फिगर आउट हुज बर्थडे इट इज. ऑलराइट, टू विन टू ओपन मूवी टिकट्स. शी इज अ चाइल्ड प्रोडिजी राइट. शी स्टार्टेड सिंगिंग एट लोकल गैदरिंग्स एट एज 4. 4 साल की उम्र से वो गाना गा रही हैं. शी वन इंडियाज फर्स्ट टेलीवाइज्ड सिंगिंग रियलिटी शो जिसका नाम था मेरी आवाज़ सुनो, वे बैक इन 1996. इट्स बीन 30 years. या एंड कल्याण जी आनंद जी का एक लिटिल वंडर्स ट्रूप में शी परफॉर्म्ड अलॉन्ग साइड अ वेरी यंग आदित्य नारायण एज वेल. एंड हर फर्स्ट फिल्म सॉन्ग वॉज इन मूवी कॉल्ड शस्त्र 1996. सुनील शेट्टी की यह फिल्म थी when she was just 13 years old and this is how she sounded at 13.
2: Ladki deewani dekho ladka deewana rehta kaise kaise dhoonde bahana.
0: Yeah, kiski awaaz hai agar aapne pehchan le, give me a call 800-1062 par kiski awaaz hai. You could win two open movie tickets in the big Bollywood quiz.

0: New tomorrows, new beginnings and bright future. Big 106.2 wishes all its Pakistani listeners a very happy Independence Day.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो?
2: बोले तो मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
0: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy. Namaste.
3: Hola.
0: Assalamualaikum.
4: Bonjour.
5: Ni hao.
4: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
5: 1 + 1 = 3.
6: That's not right.
5: It is with Skechers. When you buy 2 pairs of kids' shoes for 399 dirhams, you get a free school kit.
6: Really? And these 4 designs to choose from?
5: Yes, really! There's something for you too, Mom. You can buy any 2 shoes for 599 only.
6: Hurry to your nearest Skechers store. Offers are valid for a limited time only. T's and C's apply.
7: आपकी जीत, डाबर शिलाजीत, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
10: मॉर्निंग 9:17 ऑन दिस फ्राइडे की सुबह, कुछ और घंटे उसके बाद तो वीकेंड ही वीकेंड। आई लव दैट थॉट यार। सो राइट नाउ इट इज 38 degrees Celsius। आज पार्टली क्लाउडी, इज गोना टर्न टुवर्ड्स द इवनिंग एंड देन देर रात को बारिश के चांसेस भी हैं, बट इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री। ह्यूमिडिटी राइट नाउ 61%, पर हाईज ऑफ 40, लोज ऑफ 34।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.ae. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: It's 9:25 on this Friday morning, 14th of August. और यही होता है जब मैं सवाल थोड़ा सा मुश्किल कर देता हूँ तो काफी एंटरटेनिंग मामला हो जाता है.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: I start getting the Raveena Tandon, Karishma Kapoor type answers. नहीं भाई, मैं सिंगर की बात कर रहा हूँ. कौन से सिंगर का आज बर्थडे है? 14th of August. And yeah, it got a bit difficult because 1996, the first song she ever sung as a 13-year-old, मैंने आपको सुनाया था. Can't get enough of this one, यार. ये आवाज सुनके या ऑब्वियसली काफी सारे लोग नहीं पहचान पाए. सो लेट्स कैन मूव अ बिट क्लोजर टू द एंड ऑफ द 90s. 99 में हर ब्रेकआउट सॉन्ग वॉज दिस वन. RGV एनीवन? ये आवाज तो आपने पहचान ली होगी. वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वॉइसेस इन बॉलीवुड प्लेबैक. That she's a force to reckon with was established firmly in this song, 1999. Kiski baat kar raha hun? Ye awaaz kiski, agar aapne pehchan li, give me a call. 800-1062. Do open movie tickets you could win in the Big Bollywood Quiz. Big.
2: जब मुल्क बनता है तो सिर्फ सरहदें नहीं, जिंदगियां भी बदल जाती हैं. एक्सपीरियंस द इमोशन, करेज एंड सैक्रिफाइस इन बटवारा 1947. डायरेक्टेड बाय राजकुमार संतोषी.
3: अब ये घर हमारा है, यहाँ की हर चीज हमारी है.
2: स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंता, शबाना आजमी, अली फजल एंड करण देओल. रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 14th August. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अल निसर सिनेमा फिल्म. पावर्ड बाय बिग 106.2.
1: The Big Thrill with Mansi. Weekdays 5 PM to 9 PM on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
4: Introducing the Thumbe International Pathway Medicine Program at Gulf Medical University. Starting with 3 years of the higher diploma in preclinical sciences in the UAE, then completing the remaining 3 years at partner universities in Poland, Romania, the UK, Italy, Malaysia, Uzbekistan, Ghana, Malta or Egypt for medical degree with affordable tuition fees and scholarships. Your journey to become a globally qualified doctor starts here. Visit gmu.ac.ae or call 056-549-5755. Gulf Medical University. Where the world comes to learn.
5: Namaste.
6: Hola.
5: Assalamualaikum.
6: Bonjour.
7: Ni hao.
6: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
1: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
8: Kehte hai na, try and try till you succeed. Haar na maan mere sher, mazboot ban mazboot. मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
0: थोड़ा बहुत ट्रैफिक स्लो मूविंग डेफिनेटली आपको मिलेगा ही. 311 E11 पर जब तक ट्रैफिक नहीं हो दिन की शुरुआत नहीं होती है. देयर इज 4-5 मिनट्स का डिले हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा एंड अ बिट ऑफ कंजेशन एट बेरूत स्ट्रीट D62 इंडस्ट्रियल एरिया एंड शारजा इज जस्ट गेटिंग अ बिट बिजी एज वी स्पीक. S112 पे स्पेशली हेडिंग ईस्ट गोइंग टुवर्ड्स 611. इन केस आपको कुछ दिखता है, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर.
1: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
7: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
9: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: It's 9:43 on the clock. Khayalon mein,
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: हैदराबाद आके शादी मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद. शादी ऐसे बात करते क्या वहाँ पे हैदराबाद में लोग के ऐसे ही? दखनी होते, दखनी बोलते ना, तो उसमें ऐसे ख्यालों में जैसे महमूद वगैरह करते थे वैसे बात करते हो आपके? नहीं, इट्स जस्ट इन फिल्म्स कैसा होता है? ऐसे ही करते हैं. तो चलो ऐसी ऐसी बात करो, अगर आपको आप इंट्रोड्यूस करना हो अपने आपको तो कैसे करोगे आप दखनी में? कैसे करोगे? आज बोले तो किसका बर्थडे है? आज मैंने सवाल पूछने का, सवाल का सही जवाब देने का दखनी में.
2: अरे सिडमिया, क्या सवाल पूछे भाई? चिंदिया सवाल पूछे आज सुबह सुबह. एकदम इजी सवाल. आप एक सिंगर की आवाज सुना है ना, वो सही जवाब है सुनिधि चौहान.
0: सुनिधि चौहान, बिल्कुल सही जवाब देने का. ख्यालों में तो सीधा टेलीफोन पे आने का और सही जवाब देने का, जीतने का. दो ओपन मूवी टिकट्स मेरा दखनी इज गॉन टूवर्ड्स मुंबई. लेके मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन इट यार. लेकिन जबरदस्त ये सिंग सॉन्ग, एकदम ऐसा लगता है कि आप गाना प्लस बात कर रहे हो. कितना मीठा, इट लाइक हिट्स द ईयर इन अ वेरी म्यूजिकल फैशन ना.
2: तो अगर किसी एक ग्रैंड गाने गाया
0: मैं क्या क्या
2: बोल रहा है कि लाइक वो बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं बोलने को. हम कहते हैं कि एक से एक किराक गाने गाया.
0: क्या कान कौन से गाने गाए?
2: एक से एक किराक.
0: किराक? वाह यार, कड़क की छोटी बहन किराक. क्या एक से एक किराक गाने गाए यार, बिल्कुल किराक है. तो आप लोग को जब गुस्सा आता है, मतलब मन करता है कि एक दूसरे को गाली दो, तब भी आप ऐसी गाने, अरे ये क्या कर रहे हैं, ऐसी बात करते हो क्या?
2: बैगन के बाता नको करो बोलते हैं. डोंट टॉक रबिश का मतलब बोलते हैं बैगन का बाता मत करो प्लीज.
0: अरे यार अमेजिंग.
2: नको,
0: सॉरी बैंगन का बातें नकू करो. आई लव टू गेट स्टक इन अ ट्रैफिक सिचुएशन इन हैदराबाद एंड गेट इनटू एन आर्गुमेंट आउट देयर जस्ट टू फिगर आउट कि वहां पर लोग ऐसे बात करते हैं कि नहीं. यार चलो शाहजी, मज़ा आ गया आपसे बात करके एंड थैंक यू वेरी मच टेकिंग पार्ट. कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जीत लिए दो ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज. इट इज सुनिधि चौहान से बर्थडे टुडे. बिल्कुल बिल्कुल करो. कौन सा गाना सुनोगे बताओ?
2: दिल परदेसी हो गया बोल के मूवी है. हाँ. उसमें जो है वो मेरा चांद नजर आ गया.
0: ये कहाँ से ढूंढ के लाया हम यहाँ? मेरे को ढूंढना पड़ेगा ऐसा ढूंढ के. एकदम मिला हीरा तराश तराश के लेकर आता है तो मेरे को मेहनत करना पड़ेगा. तो चलो मैं इसको ढूंढता
2: हूँ.
0: नहीं नहीं, अरे कुछ कुछ ऐसा, कुछ ऐसा बताओ यार जो कि जिससे मेरी नौकरी ना चली जाए.
2: अच्छा ठीक है, तो उसका कर दीजिए. क्रेजी किया रे धूम टू.
0: कौन सा? क्रेजी किया रे. चलो ठीक है, दैट इज समथिंग. ये मैं बजा सकता हूँ आपके लिए. ये कमिंग अप राइट हियर फॉर ऑल द पीपल हु आर टॉकिंग इन दखनी. क्रेजी किया रे सुनिधि चौहान की बर्थडे है एंड शाहजी की रिक्वेस्ट पर हियर्स दैट सॉन्ग. शाहजी थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग पार्ट इन आवर कॉन्टेस्ट. एंजॉय द डे.
2: थैंक यू सिड भाई.
0: ऑलराइट, टेक केयर. मैं शाहजी इन एडवांस आपको, आपको भी हैदराबाद के सारे लोग जो सुन रहे हैं उनको भी हैप्पी बोले तो इंडिपेंडेंस डे. ये बोले तो मेरी ना बीच बीच में मुंबईया डालना ही पड़ता है मेरे को यार, आदत हो गई है मेरे को बोलने की. बट चलो थैंक यू सो मच यार शाहजी, टेक केयर. एंड दिस सॉन्ग इज कमिंग आउट टू ऑल द सुनिधि फैंस आउट देयर. It is her birthday today. Sunidhi Chauhan was the correct answer. And Rose Sube, don't forget to take part in the big Bollywood quiz and win two open movie tickets just like Shaji did. Khayalon mein.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
3: Namaste.
4: Hola.
3: Assalamualaikum.
5: Bonjour.
6: Ni hao.
5: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
7: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें, सिर्फ 4,888 दिरहम में, 100% डिजिटल, जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
1: The Big Breakfast brought to you by Dabur Pudin Hara. Stay indigestion free the natural way with Dabur Pudin Hara. Big 106.2.
8: This summer, this big cash wins with Big Ticket.
9: A guaranteed 15 million dirham grand prize away.
8: Plus, with Big Spin, the chance to win up to 1 million dirhams.
9: And 5 consolation prizes of 100,000 dirham each.
8: Don't forget, the 4 weekly cash prizes of 25,000 dirhams.
9: Buy now at bigticket.ae.
10: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
1: Big 106.2. That's my song.

0: झुमका?
1: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
2: बिग टाइम चेक
3: मॉर्निंग 10:08।
2: Bollywood.

0: 105.2. The beat of Bollywood.
1: Great news, Ajman. A fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prices, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands, including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us, and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward, plus exclusive member discounts. Safir Market. More choices, more savings, more reasons to shop.
2: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली
5: है। कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
6: गुड मॉर्निंग, इट्स 10:15 ऑन द क्लॉक एंड लेट्स टेक अ लुक एट The temperature right now 39 degrees Celsius, bordering on 40, humidity at 32%. Aaj raat ko der raat, there's some slight chance of rain, but that's in the northern and eastern parts of the Emirates right now. Highs of 40, lows of 34 degrees.
1: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: New tomorrows, new beginnings, and bright future. Big 106.2 wishes all its Pakistani listeners a very happy Independence Day.
1: जब मुल्क बनता है, तो सिर्फ सरहदें नहीं, जिंदगियां भी बदल जाती हैं. Experience the emotion, courage, and sacrifice in Badwara, 1947. Directed by Rajkumar Santoshi.
2: अब ये घर हमारा है. यहाँ की हर चीज हमारी है.
1: Starring Sunny Deol, Preeti Zinta, Shabana Azmi, Ali Fazal, and Karan Deol. Releasing in cinemas on 14th August. Distributed by Al Nisr Cinema Film. Powered by Big 106.2.
0: The Big Thrill with Mansi. Weekdays 5 PM to 9 PM on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit. Listen to her every day.
3: Mugambo, khush hua.
4: मैं ठीक हूँ सर. आप तो ना मुझे एकदम पिंड की याद दिला देते हैं. ऐसा लगता है फिरोजपुर से मेरे कोई दूर के कजिन है जो आजकल तो फोन करते नहीं है जब तक आईफोन का नया मॉडल नहीं आता है. बट आप जब फोन करते हो तो
5: बहुत सही बोला आपने. ये यूएई में रहने वालों के 99% लोगों की ये दिक्कत है, परेशानी है.
4: I swear. Three things that are white in color and you can eat.
5: पनीर, खोया और काजू कतली.
4: पंजाबी बंदे से तो पूछ लेता है, वाइट है, खा सकते हो.
5: रसगुल्ले.
4: हाँ, नहीं पनीर तो नंबर वन नहीं है. पंजाबी बंदा जीता ही पनीर पे है. पी फॉर पंजाब, पी फॉर पनीर. तीन चीजें जो आप मिस करते हो एज सिंगल परमजीत.
5: कॉलेज डेट, रेस्टोरेंट में कॉफी और डेटिंग.
4: अच्छा, डेटिंग. देखो तो शादी के बाद नो नो है, कितना भी मिस कर लो. ये इस रास्ते पे जाना नहीं है.
0: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: It is 10:26 on the clock and let's take a look sabse pehle at E11. हल्का बुल्का ट्रैफिक मिलेगा आपको एट अलनादर इंटरचेंज 1. उसके बाद थोड़ा दुबई क्रीक की तरफ जाता हुआ कंजेशन 4 से 5 मिनट का. नथिंग मेजर. इवन 311 पे जो ट्रैफिक था वो काफी छट चुका है. जिससे बिट ऑफ कंजेशन एज यू गेट आउट ऑफ सिटी सेंटर्स आई है, थोड़ा बहुत 3-4 मिनट का ट्रैफिक भी तो कोई ट्रैफिक होता है. देन इंडस्ट्रियल एरिया 12 पे यू विल फाइंड अ बिट ऑफ कंजेशन गोइंग टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा. एवरीथिंग इज क्लियर. 611 एमिरेट्स रोड पर देयर इज नथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट ऑन E44. हाँ, थोड़ा बहुत ट्रैफिक D71 पर आपको जरूर मिलेगा एज यू गेट आउट ऑफ दुबई मॉल हेडिंग वेस्ट एंड बिजनेस वे. मेट्रो स्टेशन के आसपास की सड़कें तो कंजेस्टेड हैं ही.
0: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001% हिस्ट्री
1: बनाएंगे। Big 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

गर्मी में वारी जावा, लेकिन अगर आप थक हारी जावा, देन आपके लिए है डाबर शिलाजीत। आपके मॉडर्न लाइफस्टाइल में क्या है ना कि ताकत की कमी होना, कमजोरी फील करना इज टोटली कॉमन। स्ट्रेस, फास्ट फूड, फास्ट पेस लाइफस्टाइल, दे कैन ऑल कंट्रीब्यूट टू मेक यू फील लो, बट यू डोंट हैव टू वरी। हैव डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, दे हेल्प इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड पावर। शेर की तरह बने मजबूत, हर दिन की शुरुआत करें में डाबर शिलाजीत। मिटाए कमजोरी, बढ़ाए रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। 100% नेचुरल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स दैट मेक यू फील स्ट्रॉन्गर एंड मोर कॉन्फिडेंट। आपकी जीत, डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।

0: 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: ताकत का तरकाव with Dabur Shilajit.
3: बिजी दिन हो या फिर टफ शेड्यूल, अपनी एनर्जी और एक्टिव लाइफस्टाइल का ध्यान रखना जरूरी है. डाबर शिलाजीत के साथ रहिए रेडी फॉर योर एवरीडे चैलेंजेस.
2: ताकत का तरकाव विद डाबर शिलाजीत.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2 The beat of Bollywood.
2: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED-247.
3: Kehte hai na, try and try till you succeed. Haar na maan mere sher, mazboot ban mazboot. मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
1: बिग 106.2 दैट्स माय सॉन्ग।
4: व्हाट्स गोइंग ऑन?

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लड़ेगा?
3: यूं ही यही 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पाँच?
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: आपकी जीत डाबर शिलाजीत आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
0: मोर रिक्वेस्ट्स, मोर डेडिकेशंस. दिस इज बिग अनलिमिटेड ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: लव।
1: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ ना, रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कने अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ ना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
2: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून 1:06।
1: Bollywood.

0: ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: जब मुल्क बनता है तो सिर्फ सरहदें नहीं, जिंदगियां भी बदल जाती हैं। Experience the emotion, courage and sacrifice in Batwara 1947. Directed by Rajkumar Santoshi.
3: Ab ye ghar hamara hai. Yahan ki har cheez hamari hai.
2: Starring Sunny Deol, Preeti Zinta, Shabana Azmi, Ali Fazal and Karan Deol. Releasing in cinemas on 14th August. Distributed by Al Nisir Cinema Film. Powered by Big 106.2.
4: Listen to her every day.
5: Mugambo, khush hua.
6: मैं ठीक हूँ सर, आप तो ना मुझे एकदम पिंड की याद दिला देते हैं। ऐसा लगता है फिरोजपुर से मेरे कोई दूर के कजिन है, जो आजकल तो फोन करते नहीं है जब तक आईफोन का नया मॉडल नहीं आता है, बट आप जब फोन करते हो तो
7: बहुत सही बोला आपने। ये यूएई में रहने वालों के 99% लोगों की ये दिक्कत है, परेशानी है।
6: I swear. Three things that are white in color and you can eat.
7: पनीर, खोया और काजू कतली।
6: पंजाबी बंदे से तो पूछ लेता है, वाइट है, खा सकते हो।
7: रसगुल्ले।
6: हाँ, नहीं पनीर तो नंबर वन नहीं है, पंजाबी बंदा जीता ही पनीर पे है। पी फॉर पंजाब, पी फॉर पनीर। तीन चीजें जो आप मिस करते हो एज सिंगल परमजीत।
7: कॉलेज डेट, रेस्टोरेंट में कॉफी और डेटिंग।
6: अच्छा, डेटिंग। देखो वो तो शादी के बाद नो नो है, कितना भी मिस कर लो ये इस रास्ते पे जाना नहीं है।
1: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: Free lunch traffic ढूंढने के लिए थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ज्यादा कहीं पर भी नहीं है। थोड़ा बहुत heading south still 311 going towards Dubai from Sharjah. You'll find a bit of congestion building up at Beirut Street, Damascus Street, but there's a bit of northbound traffic Dubai Marina going towards Sikkim area. In case you spot something, give me a call 800-1062.
9: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. This is The Big Mix on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून, 2:06।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: Big 106.2, but this is The Big Mix with me, Sid. Very special day today for all of us comedy film fans, because aaj ek bahut hi amazing hasti ka birthday. The 14th of August is the birthday of one of the biggest or best known comedians to come out of Bollywood. Is scene ko suniye, immediately aap pehchan jayenge.
2: Bade yaar, ab sab barabar ke yaar.
3: Hey, bandne ka nahi sara. Kaun sa bank lootne bola tha?
4: Bank of Bhatinda.
3: Bank of Bhatinda lootne ko bheja tha. Kya kiya tune uska?
2: Uncle gaya tha main. Manager utke mere ko salam kiya. तब मुझे याद आया कि साला अपना अकाउंट तो इसी बैंक में, और तो अपना अकाउंट लूट सकता है भाई।
3: अरे कोई दूसरा बैंक नहीं मिला तेरे को?
2: कि संडे छुट्टी बैंक
1: संडे छुट्टी है बैंक ऑफ बठिंडा वाला जो कंफ्यूजन, ऑफ कोर्स अगर आपको फिल्म का नाम याद आ रहा है, सेंड मी अ व्हाट्सएप 0543091062. इट इज जॉनी लीवर्स बर्थडे टुडे दैट वी गोना सेलिब्रेट ऑन द बिग मिक्स राइट हियर ऑन बिग 106.2. आफ्टर ऑल वी आर द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: Big 106.2 पर दिस इज द बिग मिक्स विद मी सेड एंड कुछ लोग होते हैं ना बॉलीवुड में जिनके बारे में लगता है कि यार इनकी सक्सेस भी हमारी सक्सेस है. यू गेट दिस पॉजिटिव ऑरा पॉजिटिव एनर्जी आउट ऑफ पीपल एंड वन ऑफ दोस पीपल वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट्स इज जॉनी लीवर. इट्स हिज बर्थडे टुडे. जॉनी लीवर इज दैट गाय हुज लाइक वर्क्ड प्रॉब्ली द हार्डेस्ट टू गेट इन टू बॉलीवुड. कहाँ से कहाँ पहुँच गए वाला जो एक एग्जाम्पल होता है ना, दैट इज जॉनी लीवर. बॉर्न एज जॉन राव प्रकाश राव जानुमाला, दैट्स हिज रियल नेम. एंड देन वाई लीवर? या अगर आप एक बॉलीवुड फैन है यू वुड नो दिस स्टोरी, बट इफ नॉट दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. हिज फादर एक्चुअली यूज्ड टू वर्क फॉर हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL में काम करते थे. एंड देन जॉनी ऑल्सो इवेंचुअली गॉट एम्प्लॉयमेंट, ही हैड अ पोजीशन देयर एज वेल. एंड एक फैक्ट्री फंक्शन के टाइम पे उनकी जो फ्लॉलेस मिमिक्री थी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, एक्चुअली इट थ्रिल्ड द वर्कर्स आउट देयर. एंड देन उसके बाद जो वहाँ के यूनियन लीडर थे उन्होंने इनका नाम एक्चुअली जॉनी लीवर दिया. एंड देन दिस नेम ऑफ कोर्स बिकम लेजेंडरी. रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री. अर्ली डेज में काफ़ी स्ट्रगल इन्होंने किया. सेवन्थ ग्रेड में ड्रॉप आउट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल. ही वॉज सेलिंग पेन्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ मुंबई. एंड वहाँ पर टू अट्रैक्ट कस्टमर्स उनका ये स्ट्रैटेजी था दैट ही वुड मिमिक बॉलीवुड स्टार्स. एंड दैट्स वे ही काइंड ऑफ गॉट अ बिट नोटिस्ड एज वेल. फॉर्मेटिव ईयर्स ही स्पेंट इन मुंबई धारावी स्लम एरिया. एंड ही वॉज डिस्कवर्ड बाय द लेजेंडरी सुनील दत्त. मोर अबाउट आवर फेवरेट कमेडियन जॉनी लीवर एंड सम ऑफ हिज फेवरेट आवर फेवरेट सीन्स फ्रॉम हिज बिगेस्ट फिल्म्स कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल. दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिड.

0: मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: Big. Big 106.2. The beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
2: Let's start with the capital, Abu Dhabi. आपको हल्का बुल्का ट्रैफिक मिलेगा E30 मुसफा इंडस्ट्रियल पर हेडिंग अवे फ्रॉम रब्बान. इसके अलावा एवरीथिंग एल्स सीम्स टू बी स्मूथ फ्लोइंग. चलते हैं दुबई शारजा पे. देयर इज ऑलरेडी बिट ऑफ नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक ऑन शेख जायद रोड गोइंग टुवर्ड्स ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट, एंड थोड़ा बहुत साउथ की तरफ जाता हुआ ट्रैफिक एट अलखेल रोड E44, एंड दिस इज गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस बे फ्रॉम D3.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: listening to The Beat of Bollywood.
1: ताकत का तरकाव विद डाबर शिलाजीत।
2: हर दिन को बनाइए बेटर विद अ स्ट्रॉन्ग रूटीन। हेल्दी हैबिट्स के साथ डाबर शिलाजीत को अपनी डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए और रहिए एक्टिव।
1: ताकत का तरकाव विद डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
0: बिग 106.2। दैट्स माय सॉन्ग।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून 3:05।
1: बॉलीवुड।

0: Big 106.2, but this is The Big Mix with me, Sid. And I might have found some absolute gold here. Last time you were talking about the fact that Johnny Lever, jinka aaj birthday hai, wo kaise industry mein aaya. I mean, it is also, it's a kahani of lots of struggle. And it's also a kahani of lot of luck also. Yaar. Matlab, kahan se kahan pahunchne wala jo example hai, Johnny Lever pe sabse achhe se apply hota hai. So, he got, you know, spotted by Sunil Dutt. Yeah, Sunil Dutt ne Johnny Lever. उनकी कॉमेडिक टाइमिंग उनका जीनियस नोटिस किया डिस्कवर किया एट अ चैरिटी शो परफॉर्मेंस एक लाइव शो में देखा गया यार ये बंदा बड़ा टैलेंटेड है इवेंट बैक स्टेज सेट के व्हाई डोंट यू यू नो बी अ पार्ट ऑफ माय फिल्म एंड जॉनी लीवर इज लाइक व्हाट योर सुनील दत्त फिल्म का नाम था दर्द का रिश्ता एंड ही इज द गोल्ड दैट आई फाउंड फॉर यू दिस आफ्टरनून एंड दैट इज कि आई फाउंड प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम दैट वी सॉ जॉनी लीवर डूइंग कॉमेडी इन अ बॉलीवुड फिल्म सुनील दत्त एंड दिस इज सो 80s सुनील दत्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में है इज पेसिंग अराउंड एंड यू नो चिल्ला रहे हैं पीछे जॉनी लीवर इज डूइंग अ बिट ऑफ कॉमेडी आस्किंग अ क्वेश्चन इन टूटी फूटी इंग्लिश
1: क्या समझाओगे लड़की का बाप बोलो क्यों लिखी है बेहुदा एप्लीकेशन
2: बेहुदा व्हाट मीनिंग बेहुदा
1: पढ़े लिखों की भाषा है
0: What meaning Behuda? So this is probably the first time that we ever saw Johnny Lever do a comedy. The rest, as they say, is history. Uske baad unka jo breakout role unko mila, like I mean, he got established as one of the best comedians of all time in Bollywood was in 1993. Agar aapko pata hai ki kaun se role ki main baat kar raha hu, kaun si film ki baat kar raha hu, send me a WhatsApp. Let's make this an interactive show. 054-309-1062. That's the number. This is The Big Mix with me, Sid.

0: Hollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Namaste.
3: Hola.
2: Assalamu alaikum.
4: Bonjour.
5: Ni hao.
6: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
7: आपकी जीत डाबर शिलाजीत आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स
8: लिसन टू हर एवरीडे
9: मोगेम्बो खुश हुआ
10: जी मानसी जी कैसे हैं
11: मैं ठीक हूँ सर आप तो ना मुझे एकदम पिंड की याद दिला देते हैं ऐसे लगता है फिरोजपुर से मेरे कोई दूर के कजन है जो आजकल तो फोन करते नहीं है जब तक आईफोन का नया मॉडल नहीं आता है बट आप जब फोन करते हो तो
10: बहुत सही बोला आपने यूएई में रहने वालों के 99% लोगों की ये दिक्कत है परेशानी है
11: I swear three things that are white in color and you can eat
10: पनीर खोया और काजू कतली
11: पंजाबी बंदे से तो पूछ लेता है वाइट है खा सकते हो
10: रसगुल्ले
11: हाँ नहीं पनीर तो नंबर वन नहीं है पंजाबी बंदा जीता ही पनीर पे है पी फॉर पंजाब पी फॉर पनीर तीन चीजें जो आप मिस करते हो एज सिंगल परमजीत
10: कॉलेज डेट रेस्टोरेंट पे कॉफी और डेटिंग
11: अच्छा डेटिंग देखो वो तो शादी के बाद नो नो है कितना भी मिस कर लो ये इस रास्ते पे जाना नहीं है
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक 5 PM टू 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड This is The Big Mix on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
12: लगता है बर्फ पड़ने वाली है
13: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा
0: Big Weather Update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
14: Fair to partly cloudy Friday today. It's 42 degrees Celsius on an average across the UAE. Barish ke chances aaj raat ko, but in the northern and eastern parts of the country right now, winds blowing at 12 kilometers per hour.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA, and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: डाइजेस्टन कूल टिप्स विद डाबर पुदीन हरा।
1: एसी से रूम कूल होता है, डाबर पुदीन हरा से टमी फील्स कूल। वन टाइनी पर्ल विद आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स हेल्प सूथ इनडाइजेशन डिस्कम्फर्ट नेचुरली।
0: डाबर पुदीन हरा, स्टे इनडाइजेशन फ्री द नेचुरल वे। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंसम्पशन।
2: Big 106.2. That's my song.

0: तेषां ये राजो
1: छाने नहीं रे बाबा आपते बाबा बाबा बाबूराव गणपतराव आपते बोल
2: 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून, टाइम राइट नाउ 4:06।
1: Bollywood.

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: गुड इवनिंग। 42 डिग्रीज सेल्सियस राइट नाउ ऑन एन एवरेज अक्रॉस द यूएई। दुबई में काफी ज्यादा गर्मी, लेकिन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में आज रात को शायद थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। दैट्स व्हाट द प्रेडिक्शन इज फॉर टुडे फ्राइडे लेट नाइट की मैं बात कर रहा हूँ। राइट नाउ ह्यूमिडिटी एट 35-40%।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big.

Big 106.2, but this is The Big Mix with me, Sid. And why after 20 years, if you're asking yourself that question, kuch logon ne writers ko pooch liya, Awarapan 2, 20 saal ke baad kyun release ki, bhai? And the answer they're giving is that Shivam, yani ki Imran Hashmi ki kahani, never really felt finished. Do you agree with that? Ke एकदम वो क्लोजर जो कहते हैं ना कि क्लोजर नहीं मिला था. एंड सो अहेड ऑफ टुडेज रिलीज द फिल्म्स राइटर ने कहा कि इमरान्स कैरेक्टर अनफिनिश्ड इमोशनल टेरिटरी एंड दैट इज व्हाई दे बिलीव कि यार एक सीक्वल तो बनता है यार, पार्ट टू तो बनता है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द मूला तो पैसा तो बनता है, बिकॉज यार इतनी बड़ी कल्ट क्लासिक थी. तो आई थिंक इन माई ओपिनियन इट इज जस्ट मोर अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन इट इज गोइंग टू कम आउट, नॉट वेदर इज गोइंग टू कम आउट. कि भाई स्क्रिप्ट लिखो तो अच्छी लिखो. एंड क्योंकि शिवम की कहानी काफी अच्छे से खत्म हो गई थी, दैट्स ऑलवेज अ चैलेंजिंग थिंग, राइट? कि अब कैसे लिखे. द अदर बिग रिलीज इज ऑफकोर्स बटवारा 1947. एंड द क्वेश्चन इज, वहां पे भी एक सवाल है, दैट इज सनी देओल्स कैरेक्टर जस्ट अनदर तारा सिंह? व्हाट डिड ही हैव टू से अबाउट दैट? कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल. दिस इज द बिग मिक्स विद मी, सेड गुड आफ्टरनून.

0: Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: Big 106.2 पर दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिड. सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ और प्रीति जिंटा दोनों ही दिखने वाले हैं इन 1947 बटवारा. दैट्स द फिल्म दैट्स कमिंग आउट टुडे. आमिर खान प्रोडक्शंस की ये फिल्म है. दैट इज व्हाई आमिर खान वाज अलोंग विद सनी देओल इन द ओपनिंग एपिसोड ऑफ केबीसी, राइट? एंड यू थिंक सनी देओल, यू थिंक पार्टीशन, यू इमीडिएटली योर माइंड गोज बैक टू गदर, करेक्ट? एंड तारा सिंह एंड सनी देओल हैड टू कम आउट एंड क्लैरिफाई कि नहीं, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. मैं बिल्कुल समझता हूँ कि कैसे आप ये कंपैरिजन कर रहे हो कि गदर तारा सिंह, बट दिस इज मच मोर देन जस्ट तारा सिंह. इज बीन addressing those comparisons and saying that characters' emotional worlds are completely different, although both stories are set around the partition era events. Isme Preeti Zinta, Rajkumar Santoshi ki period drama hai. Early reactions have praised Sunny Deol's performance and Preeti's return as well. So yeah, dekhte hain, gujar ke dekhni padegi. Cinema hall mein dekhne wali film hai dono hi, Awara Pantu and 1947 Batwara. This is the Big Mix with me, Sid. Good afternoon.

0: Make the school run easier in a brand new Ford. Whether in a spacious Explorer, capable Everest, refined Taurus, or versatile Territory, you'll enjoy comfort, confidence, and smart technology every day. For a limited time, get your down payment covered. Enjoy 5 years or 100,000 kilometer service and warranty. 5 years Ford app access and pay nothing until 2027. Ready, set, Ford. Visit your nearest Altair Motors or Premier Motors showroom today. Shop online or call 800-MOTORS. Conditions apply.
1: Namaste.
2: Hola.
1: Assalamualaikum.
3: Bonjour.
4: Ni hao.
3: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
5: The Big Mix, brought to you by insurancemarket.ae.
6: insurancemarket.ae.
7: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
5: Missed your morning buzz?
8: उठा ले रे बाबा।
5: Yes,
9: Yash with me on the phone line. कौन से यश हैं आप? यश चोपड़ा, बिरला, सब बड़े बड़े नाम ही एसोसिएट होते हैं यश से यार।
10: यश रावल।
9: यश रावल, क्या हाल चाल है? How are you feeling on this Thursday morning?
10: Nice, man. Excited, energetic.
9: Real estate में हैं आप, so what? Are you an agent or what side of
10: things? Yeah, I'm an investment advisor.
9: You're an investment advisor. My God.
10: Yes.
9: आज कितने लोगों को advice करने की सोच रहे हो?
10: कम से कम 4-5 तो हो ही जाएगा.
9: 4-5? अरे यार, confidence देखो यश का यार. Too good. Pro max. Since you're into real estate, तो customer is everything. So imagine, imagine that I'm one of your potential customers, okay? And I'm asking you to do something. You have to do it, okay? आप क्या करना है टू विन दीज पासिस? यू गॉट टू डू दिस।

0: for it.
1: अरे भाई इतना ही याद है मुझे.
0: अरे क्या बात है, नॉट बैड यार. चलो वेरी गुड.
2: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
3: ये 4 से 5 का जो टाइम है इसको मैं गुड इवनिंग कहूंगी, गुड आफ्टरनून जो भी है यार, थॉट दैट काउंट्स. गुड इवनिंग. एंड देयर इज अ बिट ऑफ नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक एज एक्सपेक्टेड जो कि शेख जायद रोड पर जमा होना शुरू हो गया हेडिंग टुवर्ड्स ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट. ऑल्सो बिट गोइंग टुवर्ड्स उम सकीन फ्रॉम दुबई मरीना रसलखोर की तरफ जाता हुआ ट्रैफिक भी आपको मिलने वाला है ऑन 44. एंड देन द यूजुअल 311 पर गोइंग टुवर्ड्स सिटी सेंटर मिर्दिफ यू विल फाइंड 4 से 5 मिनट की देर ऑलरेडी. इन केस यू स्पॉट समथिंग गिव मी अ कॉल 800-1062.
2: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

Big 106.2 par, this is the Big Mix. It's time for me to say goodbye to you. It's time for me to sign off from the show and go and enjoy my weekend finally. Milta hoon aapse Monday morning now. Sharp at 7, the show is called The Big Breakfast. That is the show that starts your day on a weekday from Monday to Friday. Don't forget, weekend pe bhi aapse milne wala hoon. Saturday sham 7 se 9 and then Sunday from 10 a.m. to 12 p.m. The show is called The Big Binge. Ke weekend par कौन सा शो देखा जाए. दिस टाइम स्पॉइलर अलर्ट, वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट ऑपरेशन सफेद सागर, जो कि नेटफ्लिक्स का आई थिंक सिक्स पार्ट या सिक्स एपिसोड की सीरीज है, एयरफोर्स के बारे में है. सो या द गुड पार्ट्स, द बैड पार्ट्स एंड फाइनली वेदर यू शुड स्ट्रीम इट और स्किप इट, दैट्स कमिंग अप ऑन द बिग बिंज दिस वीकेंड. सो आई एम गोना बी टेकिंग योर लीव एंड मिलता हूँ मंडे. टिल देन you can follow us on socials. We are 106.2 Big FM, 106.2 Big FM. I'm Sid Seth, SIDSETH. Till Monday, enjoy your weekend. Bye-bye.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: हाँ जी, द टाइम राइट नाउ 5:09।
1: Bollywood.

0: मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
3: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
2: अलरास बोले तो
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
2: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
4: 1 + 1 = 3.
5: That's not right.
4: It is with Skechers. When you buy 2 pairs of kids' shoes for 399 dirhams, you get a free school kit.
5: Really? And these 4 designs to choose from?
4: Yes, really. There's something for you too, Mom. You can buy any 2 shoes for 599 only.
5: Hurry to your nearest Skechers store. Offers are valid for a limited time only. T's and C's apply.
6: Wow, your hair color looks stunning.
7: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
6: Yeah, right.
7: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
6: Really?
7: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
6: I'm buying it right now.
7: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
8: ताकत का तरकाव विद डाबर शिलाजीत।
9: दिन भर एक्टिव और फोकस रहना है तो डाबर शिलाजीत लीजिए, स्ट्रेच कीजिए और अपनी एनर्जी को रिचार्ज कीजिए। छोटी आदतें बड़ा इम्पैक्ट।
8: ताकत का तरकाव विद डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
10: डिड यू हियर दैट? दैट्स द साउंड ऑफ समथिंग बिग लैंडिंग एट पापा जॉन्स। New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. 6 bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita, and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
11: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
12: 38 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 34। फिलहाल ह्यूमिडिटी काफी है एट 62% पर।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2 बिग।

0: We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: फ्राइडे की शाम है, ऑटोमेटिकली चेहरे पर स्माइल आई जाती है, बिकॉज यू नो यू डोंट हैव टू गो टू वर्क द नेक्स्ट डे, यू डोंट हैव टू सी आपके कॉलीग्स को अगले दिन, सो इट इज अ हैप्पी हैप्पी फीलिंग व्हाइल यू आर हेडिंग होम. एवरी सिंगल इवनिंग हम यहाँ पे गाना गाते हैं, माहौल बनाते हैं, गाना आए या ना आए, अगर आपको गाना अच्छा लगता है देन दिस इज इट, द ओनली प्लेटफॉर्म फॉर बाथरूम सिंगर्स.
1: Karaoke.
2: It's time for karaoke. While you're in the car, you host your concert. Awaaz aapki, audience meri. Bas koshish karna, audience bani rahe. Bada hi popular gana hai from the 90s. And I think if you love the music from the 90s, to aapne bhi is gaane ko baar baar cassette wale dinon mein repeat pe suna hoga.

पूजा भट्ट, राहुल रॉय, याद आया? अगर आ गया है तो 800-1062 इज द नंबर टू डायल। वी आर कारियोकिंग, ब्रिंगिंग इन द वीकेंड। मैं हूं मानसी।

पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। Big 106.2

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Friday ki sham hai, weekend ka mahol hai. While you're heading back home, probably you're out and about. We are karaokeing here and we've got Visham. Good evening. Kya hal chal?
2: Yes, very good evening, ma'am. I'm fine. Thank you. About you?
1: Great, fantastic. Friday ko kaun khush nahi rehta hai, batao. Jinhe Saturday ko kaam pe aana hota hai, wo na rehte honge. But
2: bilkul.
1: Humein nahi aana hai, to hum khush hain. Filhal, kaisa tha din? Kaisa raha hafta?
2: Bas, acha raha.
1: Bas.
2: Friday tha, to thoda sa pressure tha.
1: Kya karte ho aap?
2: Going back. I'm a sales executive.
1: Aap pe to 24/7 sir target ka pressure rehta hai. Kya Friday, kya Monday?
2: Bilkul.
1: Ho gaye target pure ho gaye is
2: mahine ke? Target haan, pura ho gaya.
1: To kya sell karte ho aap?
2: हम लोग स्टील इंडस्ट्रीज में
1: है. वेरी वेरी नाइस. मजा आ रहा है काम में?
2: हाँ, अभी तक तो मजा आ रहा है, चल रहा है.
1: बस चलते रहना चाहिए, गाड़ी जो है बस चलती रहनी चाहिए. फिलहाल विशाम, आर यू अ सिंगर? डू यू लाइक सिंगिंग? गाना गाने का शौक है आपको?
2: बाथरूम
1: सिंगर. यहाँ से मेरी ऑडियंस भगाओगे कि बढ़ाओगे?
2: लेट्स सी क्या रहता है.
1: अच्छा,
2: फिंगर्स क्रॉस्ड.
1: एंड सिंगर जो है वो आ चुके हैं, दिन भर जो है लोहे की तरह मेहनत करके, लोहे की मजबूती के साथ गाना गाएंगे. अब विशाम, इट्स टाइम फॉर द कारियोकी.
2: यस,
1: सो विशाम, हियर्स योर ट्रैक. हाँ जी.
2: तेरे दर पर सनम चले आए, ना आया तो हम चले आए, चले आए, चले आए. तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए.
1: ये जो हम में आपने अन्नू मलिक की आवाज निकाली है. मजा आ गया विशाल, मजा आ गया. मतलब
2: थैंक यू.
1: बाथरूम से बाहर गा सकते हो. मैं कह रही हूँ क्लाइंट अगर ना माने तो गाना शुरू कर दिया करो. तेरे दर पर सनम चले आए,
2: वही सोच रहा हूँ मैं भी.
1: मैं हमेशा कहती हूँ कि हर गाने के साथ ना किसी की याद होती है, तो इस गाने के साथ आपकी क्या याद है?
2: मेरी ऐसी कुछ खास यादें नहीं है, बट जैसा कि आपने बोला कि 90s में सभी ने वो कैसेट में फॉरवर्ड और बैकवर्ड करके ये सॉन्ग सुना है, तो बस वही है.
1: किसी के दर पे गए हो ऐसे अपनी दिल की बात लेके?
2: यस.
1: जिस हिसाब से यस बोला मतलब उसने भगा दिया था.
2: अब वो सारी पुरानी चीजें हैं.
1: कोई बात नहीं, देखो मोहब्बत का एक उसूल है, ये बार बार होती है और हर

0: अब वो सारी पुरानी चीजें हैं यार, कम ऑन।
1: कोई बात नहीं, देखो मोहब्बत का एक उसूल है, ये बार बार होती है और हर बार उतनी ही बेइंतहा होती है। कितनी अच्छी बात की है मैंने, है ना?
0: राइट।
1: चलो जी, यू हैव अ ग्रेट वीकेंड, ड्राइव होम सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
0: थैंक यू,
1: बाय। यही है कैरियोकी, गाड़ी में कैरियोके सेशंस। इफ यू आर अ सिंगर, इफ यू लाइक सिंगिंग, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर। कैरियोकी
2: 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: हां जी, bringing in the weekend, ये है Big Thrill, मैं हूं मानसी, coming up break your spot.
2: रूप दियो रानी को बरांदे को संभालने, किसी मन चलेगा तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल.
1: जो एनर्जी फ्राइडे को होती है ना, पता नहीं मंडे को कहाँ चली जाती है. फिलहाल लेट्स टॉक अबाउट द वीकेंड, सम ग्रेट कंटेंट जो आप देख सकते हो. अगर पति पत्नी वो दो नहीं देखी है, द मूवी इज अवेलेबल ऑन OTT एंड इट इज अ फन वॉच. इसी के साथ बच्चों का और बच्चों के पापा का फेवरेट गाना
2: आज की रात.
1: गाने से याद आया, हम यहाँ पे गाना गा रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, कारियोकी कर रहे हैं. इफ यू वांट टू सिंग, जस्ट गिव मी अ कॉल 800-1062 पर.

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Friday ki sham, we are bringing in the weekend and we are karaokeinga, the only concert for bathroom singers. Right now joining us is Imran. Ek Imran Hashmi ne box office mein tehlka macha diya hai, dusre Imran yahan pe aa gaye hain. Dekhiye aapne awarapan 2.
2: Ji plan hai bilkul.
1: Banta hai yaar, Imran Hashmi is making a comeback.
2: Mega mall.
1: Jana chahiye. Mega mall ja rahe ho aap dekhne?
2: Haan ji, bilkul ji. Bada acha Imran Hashmi, acha actor hai aur uske songs bade pyare hain.
1: गाने तो कमाल है. देखो इमरान हाशमी की दो ही यूएसपी है, एक मैं बता नहीं पाऊंगी, बच्चे सुन रहे हैं, दूसरे म्यूजिक कमाल होता है इनकी मूवीज का. फिलहाल इमरान साहब, गाना पहचान लिया आपने?
2: हाँ जी.
1: एंड गाना गाने को तैयार हो आप?
2: हाँ जी.
1: चलो जी, इमरान की आवाज में
0: कारियो की

0: ठीक है
1: चले आई जो आई मैं आपने 18वें सुर लगाए बहुत मजा आए बहुत ही मजा आता है इमरान आप कमाल गाते हो माहौल बनाते हो कुछ है किसी की याद जुड़ी इस गाने से तेरे दर पर सनम हम चले आए
0: नहीं नहीं किसी की भी नहीं आपको बताना ही नहीं
1: मुझे क्यों नहीं बताना है यार मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट है इसमें
0: आप सबको बता देती हूँ
1: तो यही तो मजा है दिल का दर्द बांटने से जो है हल्का होता है बताओ ना
0: अरे यार वही मामू की बेटी हो किसने होना था
1: यार ये मामू की बेटी ने आपको बहुत परेशान किया हुआ है
0: परेशान किया हुआ देख ले 20 साल हो गए उसको देखा भी नहीं
1: फिर भी जाती नहीं ना उसकी याद
0: याद के लिए जाती है वही पहला प्यार वही था
1: कोई बात नहीं उसके बाद कितने प्यार हुए आपको
0: अरे मानसी आप बड़ी फिल्म है आप यकीन करें
1: इमरान आप जाइए एंजॉय करिए आवारापन टू हैव अ ग्रेट वीकेंड
0: ओके थैंक यू
1: बाय बाय

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Make the school run easier in a brand new Ford. Whether in a spacious Explorer, capable Everest, refined Taurus, or versatile Territory, you'll enjoy comfort, confidence, and smart technology every day. For a limited time, get your down payment covered. Enjoy 5 years or 100,000 kilometer service and warranty. 5 years Ford app access and pay nothing until 2027. Ready, set, Ford. Visit your nearest Altair Motors or Premier Motors showroom today. Shop online or call 800-MOTORS. Conditions apply.
4: We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@asianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
5: Sia, self-drive's new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
6: The Big Chill.
7: All my favorite music in one spot.
6: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
8: कहते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड, हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन, आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
6: बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे। बिग टाइम चेक।
1: हाँ जी, द टाइम राइट नाउ 6:11।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, bringing in the weekend. Yeah, Big Thrill and Mansi. We're playing this fun game. It's called the 5-Second Rule. Joining us is Pooja. Hi, Pooja.
3: Hi, Mansi. How are you?
2: I am good. You sound very, very tired. Long week?
3: Yeah.
2: I know.
3: A bit longer.
2: Pooja, mujhe ek baat batao ki kya aap mere jaise ho that aapko plans cancel hone pe zyada khushi hoti hai than plans banne
3: yes.
2: pe?
3: Yes. Lately now because I'm in my late 40s.
2: अच्छा मतलब मेरा तो बहुत जल्दी शुरू हो गया फिर बट पता नहीं आई डोंट वांट टू मीट एनीवन. एक तो मेरी नींद ही पूरी नहीं होती है. 12-12, 13-13 घंटे मुझे नींद आती है. ऐसा कुछ नहीं है कि सर्दियों में भी मेरे कोई ऐसे खास प्लान्स होते नहीं है घर से बाहर जाने के. यार मुझे लगता है कि पूरे हफ्ते आप घर से बाहर रहते हो. एटलीस्ट 2 दिन रेंट तो वसूलो ना. घर पे तो रहो. पता नहीं सबको बाहर जाना है बाहर जाना है तो मुझे घर पे रहना अच्छा लगता है. फिलहाल पूजा विल प्ले दिस फन गेम. इट्स कॉल्ड 5-Second Rule. आपको मिलेंगे 5 सेकंड. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज. आपने 3 चीजें बतानी है बट हैज टू बी वेरी वेरी क्विक विद इन 5 सेकंड्स. ऑल द वेरी बेस्ट.
1: 5-Second Rule.
4: Oh yeah.
2: इट्स सुनिधि चौहान का बर्थडे. 3 सुनिधि के गाने. टफ है ये थोड़ा. अरे अरे अरे पास पास वाला है नहीं जवाब देना. अच्छा 3 शाहरुख खान की मूवीज जिनमें उनका नाम राहुल था.
3: कुछ कुछ होता है
2: और
3: कभी खुशी कभी गम.
2: ओके
3: दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे.
2: उसमें राज था. उसमें राहुल नहीं था.
3: ओ,
2: 3 ऐसी चीजें दारा ग्रीन एंड कलर यू कैन ईट.
3: स्पिनच
2: एंड फटाफट इन 5 सेकंड्स. नेम 3 थिंग्स दैट यू फाइंड ओनली एट अ बीच.
3: सैंड
2: और गया 5 सेकंड. 3 ऐसी चीजें जो दही से बनती हैं. दही से पनीर बनता है.
3: रायता
2: हो गया. रायता फैल गया. 5 सेकंड फटाफट. 3 romantic things दैट यू डू फॉर योर हस्बैंड.
3: टेक हिम ऑन डेट्स एंड होल्ड हिज हैंड.
2: व्हाट वाज द सेकंड वन.
3: हिम.
2: अच्छा ओके. ओ इमरान हाशमी.
1: 5-Second Rule.
4: Oh yeah.
2: पूजा गेम तो आपने बिल्कुल अच्छा नहीं खेला. आप नर्वस हो गए थे बट इमरान हाशमी से याद आया. आर यू गोइंग फॉर अवारापन 2 विद योर हस्बैंड टू रीलिव दोज मोमेंट्स दैट यू जस्ट डिस्क्राइब्ड.
3: यस
2: डेफिनेटली. सुपर. ग्रेट वीकेंड एंड एंजॉय योरसेल्फ. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग.
3: Bye bye.
2: Yeah, 5-Second Rule. मैंने कहा ना कि ये बहुत इजी साउंड करता है बट ये इतना आसान है नहीं. आपने खेलना है तो कॉल करना बहुत आसान है. टोल फ्री नंबर है 800-1062.

0: Go for it. अरे
1: भाई इतना ही याद है मुझे.
0: अरे क्या बात है, नॉट बैड यार. चलो वेरी गुड. एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
2: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
3: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
4: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
5: स्टिल 38 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 34. ह्यूमिडिटी फिलहाल 61% पर.
4: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द UAE, ओमान, कतर, KSA एंड बहरेन. विजिट अलरास.me.

0: Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Friday ki sham hai, weekend wali feels hai, and aa chuke hai Faisal. Good evening, Faisal.
2: Good evening, Mansi. How are you?
1: I am good. Aap itne dukhi kyun ho, sir?
2: Dukhi isliye hoon ki sale nahi hui abhi tak.
1: अरे क्या सेल करते हो आप?
2: प्रॉपर्टी
1: सेल में तो टाइम लगता है ना फैजल, ऐसा थोड़ी ना, प्रॉपर्टी इज अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट, फिर जब उसकी कमीशन भी मिलती है तो वो भी तगड़ी मिलती है।
2: टीम में किसी ने नहीं बेचा, उस बात का दुख है।
1: कोई नहीं, हम दुआ करते हैं कि मंडे को एक सॉलिड प्रॉपर्टी आपकी बिक जाए। दोगे क्या 1-2% कमीशन मुझे?
2: इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। रेफरल पॉलिसी है हमारे पास।
1: नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ दुआ करूंगी आपके लिए कि आपको मिल जाए मंडे को कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले। अदरवाइज व्हाट प्लान्स फॉर द वीकेंड?
2: वीकेंड आवर अपन टू।
1: हाँ, आपको जरूरत है थोड़ी इमरान हाशमी की डोज की, जिस हिसाब से आप दुखी हो गए हो कि प्रॉपर्टी नहीं जा रही है। फिलहाल वी विल प्ले दिस फन गेम, इट्स कॉल्ड द 5-second रूल। यू गेट 5 seconds, आई एम गोना गिव यू फ्यू कैटेगरीज, तीन चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर।
0: 5 second रूल।
3: ओह या।
1: नेम 3 बॉलीवुड मूवीज जिनके टाइटल में दिल आता है।
2: मूवी
1: जी,
2: हम दिल दे चुके सनम,
1: और टाइम खत्म हो जाता है। 5 सेकंड। 3 एनिमल्स दैट यू कैन कीप एट होम एज पेट्स।
2: कैट, डॉग
1: और
2: एंड
1: अयो अरे टाइम खत्म हो गया, फटाफट खेलो यार फैजल, फटाफट। 3 ऐसे झूठ जो आप अपने क्लाइंट्स को बोलते हो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए।
2: प्राइस चेंज हो गया है, यूनिट अवेलेबल नहीं है, और
1: टाइम खत्म हो गया। यहाँ से
2: बुर्ज खलीफा
1: दिखता है, ये नहीं बोलते हो। कितने सेकंड चाह रहे हो आप? बोलो, गेम ही बदल देते हैं आपके लिए। 3 ऐसी चीजें जो आपको अपने पार्टनर के बारे में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं।
2: नहीं, ऐसा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता।
1: क्यों, साथ में बैठी हैं?
2: नहीं।
1: फिर?
2: हाँ, तो मेरी अभी नई नई शादी हुई।
1: ओहो, तभी ये दुख सेल का नहीं है, ये किसी और चीज का लग रहा है मुझे। शादी के बाद 3 ऐसी चीजें जो बदल गई हैं आपकी जिंदगी में।
2: टाइम, डिसिप्लिन एंड
1: दोस्तों से नहीं मिल सकता हूँ मैं।
0: 5 second रूल।
3: ओह या।
1: खेला तो बहुत ही खराब फैजल आपने, बट सब्र बढ़ गया, ये पहला है। वरना अक्सर लोग कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल पाता हूँ।
2: नहीं, मैं मिल लेता हूँ।
1: मिल लेते हो आप, चलो ठीक है, एटलीस्ट आपको परमिशन मिल जाती है। जाओ, आप दोनों नई नई शादी हुई ना, आवारा पन टू देख कर आओ, मजा आएगा।
2: Whoever
1: wants to buy property, get in touch with फैजल।
2: Thank you so much.
1: Bye, फैजल, be happy. Bye. Bye. 5 second rule, आपने खेलना है, एक ही रूल है, कॉल करना 800-1062 पर।

0: 92.2 The Beat of Bollywood.
1: जब मुल्क बनता है तो सिर्फ सरहदें नहीं, जिंदगियां भी बदल जाती हैं. एक्सपीरियंस द इमोशन, करेज एंड सैक्रिफाइस इन बटवारा 1947. डायरेक्टेड बाय राजकुमार संतोषी.
2: अब ये घर हमारा है, यहाँ की हर चीज हमारी है.
1: स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंता, शबाना आजमी, अली फजल एंड करण देओल. रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 14th August. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अल निसर सिनेमा फिल्म. पावर्ड बाय बिग 106.2.
3: Introducing the Thumbe International Pathway Medicine Program at Gulf Medical University. Starting with 3 years of the higher diploma in preclinical sciences in the UAE, then completing the remaining 3 years at partner universities in Poland, Romania, the UK, Italy, Malaysia, Uzbekistan, Ghana, Malta or Egypt for medical degree with affordable tuition fees and scholarships. Your journey to become a globally qualified doctor starts here. Visit gmu.ac.ae or call 056-549-5755. Gulf Medical University. Where the world comes to learn.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
4: Insurersmarket.ae. We insure the cat. We also insure the yacht the cat is sitting on. Pet, yacht, car, health, home and more. Call 800-ALFRED 24/7. Insurancemarket.ae.
5: कहते हैं ना, Try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत. मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत

0: Albert Shilajit. Consult your doctor before taking medicine and pharmaceutical products.
1: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
2: स्लो मूविंग ट्रैफिक है अगर आप हेसे स्ट्रीट पे हैं, स्पेशली इफ यू राउंड जेवीसी गोइंग टुवर्ड्स पोर्ट सिटी ऑल द वे टुवर्ड्स मोटर सिटी, इट्स अ बिट पैची. देयर इज आल्सो ट्रैफिक मरीना टू जेबीआर एंड इफ यू राउंड जेएलटी एट द मोमेंट. हल्का फुल्का ट्रैफिक नियाल क्रूज इंडस्ट्रियल एरिया, स्टिल वेरी वेरी स्लो मूविंग. अगर आप फेस्टिवल सिटी के आसपास हैं, देयर इज अ 14 टू 18 मिनट डिले. हैवी ट्रैफिक ऑन द शेख मोहम्मद बिन जायद मोटिव टू मोहसिना, इट्स काइंड ऑफ पैक्ड. 33 मिनट का डिले दिखा रहा है. और कुछ अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं मुझे बताइए 800-1062 पर.
1: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Honestly, आज के जमाने में कुछ भी हो सकता है सिवाय सच्चे प्यार के. For all those जो वहां से कह रहे हैं सही कहा, तो मतलब आप और मैं सेम कश्ती पे सवार हैं. There was a time when I was very active on online dating apps, but it's been a while that I've given up. त्याग दिया मैंने सब. But imagine कि आपकी online dating app आपकी मम्मी हैंडल कर रही है. अब if you're a fellow देसी, हमारे यहाँ प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है. दरवाज़ा क्यों बंद किया हुआ है, क्यों वहाँ जाना है, किसके साथ हो, वीडियो करो. बट ये डेटिंग ऐप मैनेज करने तक पहुँच जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था. दिस स्टोरी इज़ गोइंग वायरल ऑन सोशल मीडिया अबाउट दिस दिल्ली गाय हु इज़ अ टेकी. ही इज़ 29 एंड उसकी मम्मी ने मैटर जो है वो अपने हाथों में ले लिया है कि नहीं, ये लड़का मेरा सेटल नहीं हो रहा है, अरेंज मैरिज इसने करनी नहीं है, हिंज इसने डाउनलोड किया हुआ है, तो अब मैं ही इसको डेट पे भेजूंगी. मोर ऑन द स्टोरी व्हेन आई कम बैक. ऑल्सो वी आर सेलिब्रेटिंग सुनिधि चौहान, द वॉइस सुनिधि चौहान आज शाम राइट हियर ऑन बिग 106.2 The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। हाँ जी, द टाइम राइट नाउ 7:10।
0: मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। New tomorrows, new beginnings and bright future. Big 106.2 wishes all its Pakistani listeners a very happy Independence Day.
2: Same street, same shop, same hours. How is your shop busier than mine?
0: Because my shop doesn't close at 9. It's online.
2: Online? That takes months.
0: Not at all. I just picked a package. Now orders come in every day. Raspberry IT Services puts your business online. Pick a website package, we handle the rest. Starting from just 999 dirhams a year. Call or WhatsApp on 050-8323-481.
3: Early in the morning,
1: the Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Dabur Pudin Hara. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
4: Wow, your hair color looks stunning.
5: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
4: Yeah, right.
5: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
5: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
6: ताकत का तरकाव विद डाबर शिलाजीत।
7: आज का पावर टिप, अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट के साथ कीजिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से ही बनता है स्ट्रॉन्ग डे।
6: ताकत का तरकाव विद डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
7: 37 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 34, प्रीटी ह्यूमिड टुडे, फिलहाल ह्यूमिडिटी है 64% पर।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: All right, imagine your mom taking over your dating app. I don't even want to imagine. Filhal, the story is going viral. बंदा जो है दिल्ली में टेकी है, अराउंड 29 इयर्स, गुड़गांव में ये काम करता है. तो मतलब 14-15 घंटे की शिफ्ट होगी इसकी. जीरो टाइम टू डेट, जीरो एनर्जी टू स्वाइप. एंड सीइंग हिज ड्राई हिंज अकाउंट, इसकी मम्मी ने बोला कि नहीं, अब ये मैटर मैं अपने हाथों में लूंगी. व्हाइल ही वाज स्लीपिंग मम्मी ने जो है इसका फोन लिया एंड इसके हिंज अकाउंट पे मैचेस ढूंढने लगी. शी स्टार्ट्स swiping, she gets a match back, and then in a very dignified, in a very polite way, वो अपनी बात जो है एक match के सामने रखती है, and the girl agrees to meet him. Fast forward, when the guy meets the girl for coffee, she said, oh my god, I've never met a guy as polite as you. आपकी texting से समझ में आ रहा था कि आप कितने polite हैं, कितने patient हैं. And then he confessed के ये जो सारी चैटिंग आप करके यहाँ कॉफ़ी पीने आई हैं, इसके पीछे मैं नहीं, मेरी मम्मी है. तो माय मॉम वाज चैटिंग विद यू, इट वाजंट मी, शी फिक्स्ड दिस डेट फॉर मी एंड आई एम हियर. एंड आई डोंट नो इसके बाद उस लड़की का रिएक्शन क्या होगा, क्या वो वहाँ बैठी होगी या वहाँ से भागी होगी. बट माई क्वेश्चन इज, वुड यू लेट योर पेरेंट्स रन योर डेटिंग प्रोफाइल? Head to our Instagram page, all the single millennials, and go and vote. There is a poll up there, 106.2 Big FM it is.

0: 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Make the school run easier in a brand new Ford. Whether in a spacious Explorer, capable Everest, refined Taurus, or versatile Territory, you'll enjoy comfort, confidence, and smart technology every day. For a limited time, get your down payment covered. Enjoy 5 years or 100,000 kilometer service and warranty. 5 years Ford app access and pay nothing until 2027. Ready, set, Ford. Visit your nearest Altair Motors or Premier Motors showroom today. Shop online or call 800-MOTORS. Conditions apply.
2: अरे ओ सांबा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
3: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
2: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
2: चलो चले अलराज।
4: Sia self-drives new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
5: Insuremarket.ae. What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy through the MyAlfred app. Insuremarket.ae.
6: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
0: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: Still solid traffic on Sheikh Zayed, 37 minute delay at the moment. There's also patchy traffic if you're on the Sheikh Mohammed bin Zayed Merdif to Mohesna. Around 28 to 35 minute delay, depends ki aap hain kahan. Bahut hi slow moving traffic hai near Dubai Festival City, and agar aap Garud ke aas paas hain, wahan bhi 15 se 20 minute ka delay dikha raha hai. Iske alawa patchy traffic at the moment if you are heading towards Marina and JBR side. In fact, Media City se Marina and JBR, it's a bit patchy. Anything else you'd like to report, let me know 800-1062 par.
8: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मेरा प्लान तो सेट है, आई हैव टू वॉच कृति सैनन, शाहिद कपूर एंड रश्मिका मंदाना की कॉकटेल 2, जो आज नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी है।
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: एंड ऑफ कोर्स मेरा प्लान भी है टू वॉच ट्रेटर्स 2, बिकॉज आई एम इन टू रियालिटी टीवी एंड दिस इज सीजन 2। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक रियालिटी शो है, विच इज बेस्ड ऑन दिस फन पार्टी गेम। आई डोंट नो अगर आपने खेला है कि नहीं, इट्स कॉल्ड माफिया एंड ऑल्सो नोन एज द वेयरवुल्फ, जिसमें दो टीम्स होती हैं, इनोसेंट वर्सेस ट्रेटर्स। एंड बहुत ही कमाल गेम होता है ये माफिया। फॉर ऑल दोज हू प्लेड यू नो कि कितने रिश्ते जो है खराब होते हैं। देयर इज अ नाइट एंड अ डे फेज एंड ट्रेटर्स इज एग्जैक्टली based on this brilliant casting. This time we've got Munawwar Farooqi, Fukra Insan, that is Abhishek Malhan, Riya Chakrabarti, Shweta Tiwari, Malika Sharawat, Crystal D'Souza, just to name a few. बहुत ही brilliant casting है. And of course the ultimate game master Karan Johar इसे host करते हैं. 21 celebrity players. This time this is being filmed at Suryagarh Palace in Jaisalmer. And I'm loving Malika Sharawat and Shweta Tiwari so far. It's a brilliant, brilliant show. And it's all about mind games. So if you like psychological mind games, I highly recommend that you watch Traitors. And start watching. ये season 2 है, season 1 भी आ चुका है. तो बहुत ही कमाल है ये show. And अगर आपने कभी Mafia ये game खेला नहीं है, next time you have a house party, try playing this game. Big.

0: 101.2 The Beat of Bollywood.
1: Hello.
2: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. हेलो, सुन रहे हो ना?
3: हे,

तेषां ये राजो जाने नहीं रे बाबा आपते बाबा बाबा बाबूराव गणपतराव आपते बोल 106.2 द बी

0: मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। New tomorrows, new beginnings and bright future. Big 106.2 wishes all its Pakistani listeners a very happy Independence Day. The Big Jill.
2: All my favorite music in one spot.
1: Weekdays 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: नमस्ते।
4: ओला।
3: अस्सलाम वालेकुम।
5: बोंजूर।
6: नी हाओ।
5: डिड यू नो? नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
7: कहते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड। हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत। मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।

0: बॉलीवुड
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली
2: है। कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 8:30 बजने वाले हैं, स्टिल 36 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 34। फिलहाल काफी ह्यूमिड आज, ह्यूमिडिटी 68% पर।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2।
4: Girl, I still remember the first time I saw you. In your eyes I saw lights shining bright, and all at once I knew I was gonna love you

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: देखो, प्यार तो तुमसे है, बट द काइंड ऑफ खाना यू ईट उससे मुझे प्यार नहीं है। अगर आपकी ये सिचुएशन है, देन दिस इज फॉर यू। दिस इज अ न्यू ट्रेंड विच इज कॉल्ड फूड डिवोर्स बिटवीन कपल्स, वेयर इन कपल्स मेक देयर खाना सेपरेटली एंड अपनी ग्रोसरी भी सेपरेट लेकर आते हैं। सो इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग अ सिंगल मेन्यू, पार्टनर्स अग्री टू सेपरेट देयर मील प्रेप, ग्रोसरी प्लानिंग एंड डाइनिंग स्केड्यूल्स, सो दैट्स टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड हेल्थ गोल्स जो है मेंटेन रहे। अब सोचो, आप जो है वो बटर चिकन तंदूरी चिकन वाले हो, पार्टनर आपका वीगन है, तो कैसे चलेगा ना। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें अपना अलग अलग खाना खाओ एंड कलेश से बचो। इसमें अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, किसी की कीटो डाइट है, कोई मैक्रोस काउंट कर रहा है, स्ट्रेस है ही नहीं। एंड द बेस्ट पार्ट इज रोज शाम को वही सवाल, क्या ऑर्डर करें, क्या खाएं, तुमको ये खाना है नहीं, मुझको ये खाना नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये पिछले हफ्ते खाया था। ऑल ऑफ दिस इज आउट ऑफ द विंडो, क्योंकि जो खाना है अपना ऑर्डर खुद करो, खुद खाओ। दैट इज फूड डिवोर्स इन रिलेशनशिप।

0: मेरे बॉयफ्रेंड से भूलू भूलू करेगी तो धपकेंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

बनते हैं विद द बिग बिंज एंड आई कीप यू कंपनी विद द टॉप 40 बिगेस्ट हिट्स ऑफ द वीक द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन. आई विल सी यू टुमारो एग्जैक्टली 4 बजे एंड टुमारो आल्सो हैपेंस टू बी इंडिया का इंडिपेंडेंस डे. तो आप कुछ कमाल गाने भी सुनने वाले हैं सुबह 8 से 10. Time for me now to say bye-bye. Before I leave, do not forget to follow us on socials. 106.2 Big FM it is. You can say hi to me. I'm Mansi talking. And I'll be leaving you with Aditya Rikhari ki awaaz. Again, a beautiful one from Pati Patni aur Wo Do. Kamal content hai is weekend on OTT. From Traitor Season 2 to Cocktail 2 to... Agar aapne nahi dekhi hai Pati Patni aur Wo Do, bahut kuch hai. And agar aap long drive pe ja rahe hain, kyunki aaj to Jashn-e-Azadi bhi hai. So up next, some fantastic long drive, feel good music right here on Big 106.2. I'll see you tomorrow with the Big Bollywood Countdown. Good night.

0: जवानी में इतने इश्क कर लिए हैं कि अब मुझे इश्क से डर लगने लगा है। इसे कहते हैं ट्रॉमा।
1: द बिग थ्रिल विद नॉन्सी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: चलो जी, यहाँ से मेरा बाय बाय गुड नाइट कहने का टाइम। आप फिर मिलेंगे। कब मिलेंगे? कल मिलेंगे। यस, वीकेंड पे भी वी कीप यू कंपनी विद सम फैंटास्टिक म्यूजिक। प्लस इफ यू गेट वेरी वेरी कंफ्यूज कि वीकेंड पे क्या देखूं क्या नहीं देखूं, देन सिड के साथ योर बिंजिंग प्लान्स

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल ब्रॉट टू यू बाय
1: insurancemarket.ae.
0: Some nights need no words, just the right vibe. Sink into the big chill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटाएगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।
1: तेरी